हाँ हाँ हो रा चाम्रो माटो माथी बाल्दै मन को बाती डल्ला फर्काई फर्काई ढाड़ मर्काई मर्काई।

तक तक तक तक तक तक तक तरे हो यतिका दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाइ हिँड हो रा